0: संत के दुखी की जड़ किस ना है, अपन बीज आप ही खाहे।
1: संत के दुखी को अवर ना राखन हार, नानक संत भावै ता लए उबार।
0: संत का दुखी इउं बिरलाए, ज्यों जल बिहून मछली तड़फड़ाए।
1: संत का दुखी भूखा नहीं राजा, जो पावक ईदन नहीं त्रापै।
0: संत का दुखी छुटे एके।

0: ब्रह्म जन जन मैं पार ब्रह्म एक ही आप नहीं कछ भरम
1: सह सियाणप लया न जाइए नानक ऐसा गुरबड़ भागी पाइए
0: सफल दर्शन पेख पुनीत परसत करन गत निर्मल रीत
1: भेटत संग राम गुण रवे पार ब्रह्म की दरगह गवे
0: सुन कर बचन करने आगानी मन सुन तो खातम प्रतियानी
1: पूरा गुर अखियो जाका मंत्र अमृत दृष्ट पेख होए संत
0: गुण बेअंत कीमत नहीं पाए नानक किस भावै तिस दए मिलाए
1: जहबा एक उस्तत अनेक सत पुरख पूरन विवेक
0: काहू बोला पौचर प्राणी अगम गोचर प्रभ निर्वाणी
1: निराहार निर्वैर सुखदाई ताकि कीमत किने न पाई
0: अनक भगत बंधन नित कर है चरण कमल हृदय स्मरह
1: सत बलिहारे सत गुर अपने नानक जिस प्रसाद ऐसा प्रभ जपने
0: एहो हर रस पावै जन कोई अमृत पीवै अमर सो होए
1: उस पुरख का नाही

0: अष्टपदी।
1: जब अकार कछु न दृष्टे ता पाप पुन तब कहते होता।
0: जब धारी आपन सुन समाद तब बैर विरोध के संग कमात।
1: वरण चहन न जापत तब हरक शोक को किसे व्यापत।
0: जब आपन आप आप पार ब्रह्म ता मोह कहा किस होत भरम।

0: अष्टपदी।
1: आप कथे आप कथे आप सुनने हार आपे एक आप विस्तार।
0: जात संभावता सृष्टि उपाई अपना भाना लय समाई।
1: कुछ होए अपन सु सब जगत परोए।
0: जा को प्रभु जी आप बुझाए सतनाम सोई जन पाए।
1: सो समदर्शी ततक बेटा नानक सगल सृष्टि का जेता।
0: जीव जन पर सब ताका हाथ दीन दयाल अनाथ को नाथ।
1: राखे तिस कोई न मारे सो मुआ जिस मनो विसारे।
0: तिस ता अवर कहा को जाए सब श्री एक निरंजन राय।
1: जुगत जाके सब हाथ अंतर बार जानो साथ।
0: गुण निधान बेअंत पार नानक दास दा बलहार।
1: अपने कर्तव्य जाने आप
0: पूर्ण पूर रहे दयाल। सब ऊपर
1: रहे दयाल सब ऊपर होवत कृपाल।
0: अपने कर्तव्य जाने आप अंतर जामी रहो व्याप।
1: परले जिन जीन बो पात जो जो रचियो सो तिसे त्यात।
0: जिस भावै तिस लय मिलाई भक्त करे हर के गुण गाई।
1: मन अंतर विश्वास कर मान्या।

0: अष्टपदी
1: संत संग अंतर प्राप्त दीठा नाम प्रभु का लागा मीठा
0: सगल समिग्री एक से घट माहे अनक रंग नाना दृष्टाहे
1: नानिद अमृत प्रभु का नाम देही मैं इसका विश्राम
0: सुन समाद अनहत्ता नाद कह न जाई तट विस्माद
1: तिन देख्या जिस आप दिखाए नानक तिस जन सो जी पाए
0: सो अंतर सो बार अनंत घट घट व्याप रहा भगवंत
1: तरन माहे आकाश पयाल सर्व लोक पूरन पतपाल
0: बंतन पर्वत है पार ब्रह्म जैसी आज्ञा तैसा कर्म
1: पौन पानी बैसंतर माहे चार कुंट दिसे समाहे।

नमः अष्टपदी सिमरो सिमर सिमर सुख पावो कल कलेश तन माहे मिटावो सिमरो जास विसंबरे के नाम जपत अगनत अनेक कहे वेद पुराण सिमर सुधा कर कीने राम नाम में का कर किन का एक

सुखमृत प्रणाम भगत जना के मन विश्राम रहाओ। प्रभु के सिमरन गर्भ न बसाए, प्रभु के सिमरन दुख जम न सह, प्रभु के सिमरन काल पर हरे, प्रभु के सिमरन दुश्मन टरे। प्रभु सिमरत कछ बिघन लागे, प्रभु के सिमरन अंदन जागे, प्रभु के सिमरन भवन व्यापे, प्रभु के सिमरन दुख न संतापे। प्रभु का सिमरन साध के संग सर्व निदान नानक हर रंग, प्रभु के सिमरन रिसिद्ध नवनिध, प्रभु के सिमरन ज्ञान ध्यान तत् बुद्ध, प्रभु के सिमरन जप तप पूजा, प्रभु के सिमरन बिनसै दूजा। प्रभु कै सिमरन तीरथ स्नानी, प्रभु कै सिमरन दरगह मानी, प्रभु के सिमरन होय सुफला, प्रभु के सिमरन सुफल फुला, से सिमरे जिनाब सिमराए, नानक ताकै लागू पाए। प्रभु का सिमरन सब ते ऊँचा, प्रभु के सिमरन द्रेम ऊँचा, प्रभु के सिमरन तृष्णा बुझे, प्रभु के सिमरन सब के सुजे, प्रभु के सिमरन नाही जमत्रासा, प्रभु के सिमरन पूर्ण आसा। प्रभु कै सिमरन मन की मल जाए, अमृत नाम हृदय माहे समाए, प्रभु जी बसाए साध की रसना, नानक जन का दासन दसना। प्रभु को सिमरे से तनवंते, प्रभु को सिमरे से पतवंते, प्रभु को सिमरे से जन प्रवान, प्रभु को सिमरे से पुरख प्रधान। प्रभु को सिमरे से बहमोता जे, प्रभु को सिमरे से सर्व के राजे, प्रभु को सिमरे से सुखवासी, प्रभु को सिमरे सदा अविनाशी, सिमरन ते लागे जिन आप दयाला, नानक जन की मंगै रवाला। प्रभु को सिमरे से परोपकारी, प्रभु को सिमरे तिन सद बलहारी, प्रभु को सिमरे से मुख सुहावे, प्रभु को सिमरे तिन सुख बिहावे। प्रभु को सिमरे तिन आत्म जीता, प्रभु को सिमरे तिन निर्मल रीता, प्रभु को सिमरे तिन अंध कनेरे, प्रभु को सिमरे बसे हनेरे, संत कृपा ते अंदिन जाग, नानक सिमरन पूरे भाग। प्रभु कै सिमरन कार्य पूरे, प्रभु कै सिमरन कबू न चूरे, प्रभु कै सिमरन हर गुण बानी, प्रभु कै सिमरन सहज समानी, प्रभु कै सिमरन नैचल आसन, प्रभु कै सिमरन कमल विगासन। प्रभु कै सिमरन अनहद चुनकार, सुख प्रभु सिमरन का अंत न पार, सिमरे सजन जिनको प्रभु मया, नानक तिन जन सरनी पया। हर सिमरन कर भगत प्रगटाए, हर सिमरन लग भेद उपाए, हर सिमरन पैस जति दाते, हर सिमरन नीच चौकुण जाते। हर सिमरन तारी सब तरना, सिमर सिमर हर कारण करना, हर सिमरन कियो सगल कार।

राजपदी। रमैया के गुंचेत प्राणी कौन मूलते कौन दिष्टानी, जिंतु सास सवार सिगारिया गर्भगन में जिने वारिया, बार व्यवस्था तुझे प्यारे दूध पर जो बन भोजन सुख सूद। बिरद पयाओ प्रसाक सहन मुख प्याओ बैठ काओ दैन, एहो निर्गुन गुन कछु न बूझे बख्श लियो तव नानक सीजय। जय प्रसाद तरु पर सुख बसे सुत प्रहद मीत बनता संग से, जय प्रसाद पीवे शीतल जला सुखदाई पवन पावा कमला, जय प्रसाद भोगे सब प्रसाद सगल सामग्री संग साथ बसा। दीने हस्त पाव करण नेत्र रसना तसे त्यागवर संरचना, ऐसे दोख मूढ़न व्यापे नानक काड ले हो प्रभापे। आदंत जो रखन हार तिस्यो प्रीत न करे गवार, जाकी सेवा नवनिध पावे ता स्यो मूढ़ा मन नहीं लावे, जो ठाकुर सदा हजूरे ता को अंधा जान दूरे। जाकी टहल पावे दरगह मान तिसे बिसारे मुगत जान, सदा सताए भूलन हार नानक राखन हार पार। रतन त्या कौड़ी संग्रचे सा छोट छूट संग मचे, जो छुड़ना सो स्थिर कर माने जो हुवन सो दूर, प्राणे छोड़ जाए तिसका श्रम करे संग साई तिस पर हरे। चंदन ले पुतारे तो हे गर्द पीत पसम संग होए, अंधकूप में पतित बिकराल नानक काड ले हो प्रभ दयाल। करतूत पशु की मानस जात लोक पचारा करे दिन रात, बाहर पे कंतर मन माया छपस नाय कछ करे छपाया बार।

ताम बारक तेरे तुमरी कृपा मैं सुख नेरे। कोई न जाने तुम रान तो उचे ते ऊंचा भगवंत सकल समग्री तुम रह सूत्र धारी तुम ते हो स्वाग्या।

नानक कहू न सीजई बिन्ना वह पत जाए। अष्टपदी दस वस्तु ले पाछे पावे, एक वस्तु कारण बिकोट गवावे। एक भी ना दे दस पीहिर ले तो मुड़ा कहो का करे। जिष्ठा कुर्स्यो नाही चारा ताको की जय। सत नमस्कार जाके मन लागा प्रमीठा, सर्व सुख ताऊ मन उठ। जिस जन अपना हुकुम मनाया, सर्व थोक नानक तिन पाया। गनत साहु अपनी देरास, खात पीत बरतय न तुलास। अपनी अमान कछ बहुर साहूले, ज्ञानी मन रोस करे। अपनी प्रतीत आप ही खोवे, बहुर का विश्वास न होवे। जिसकी बस्त सागे रखे, प्रभ किया गया माने माथे। उसते जोगन करे निहाल, नानक साहेब सदा दयाल। अनेक बात माया के हेत, सर पर होवत जान अनेत। की छाया स्यो रंग लावे, ओ बिन स्यो मन पछुतावे। जो दिसे सो चालन हार, लपट रहो ते अंधंधार। बटाऊ स्यो जो लावे, नेह ताको आत ना आवे। कहे मन अर के नाम की पी, सुखदाई कर कृपा। नानक आप लै लाए, मिथ्या तंदन कुटुम सबाया। मिथ्या होम मैं ममता माया, मिथ्या राजुबन तनमाल। मिथ्या काम क्रोध विकराल, मिथ्या रथ अस्थि असभ अस्त्रा। मिथ्या रंग संग माया पेख हस्ता, मिथ्या त्रोम मोहो मान। मिथ्या पशुप्र कर्त गुमान, अस्थिर भगत साध की शरण। नानक जब जब जीव हर के चरण। मिथ्या शरण पर निंदा सुने, मिथ्या पर दर्प को हिरे। मिथ्या नेत्र पेखत पर त्रि रूपाद, मिथ्या रसना भोजन अंसवाद। मिथ्या चरण पर विकार कुतावे, मिथ्या मन पर लोभ लुभावे। मिथ्या तन ही पर उपकारा, मिथ्या वास नेत विकारा। बिन बुझे मिथ्या सब भय सफल दे, नानक हर नाम लय। बिरथी साकत की आर जा, साज बिना के हो सूचा। बिरथा नाम बिना तनंद, मुखावता कह दुर्गंध। बिन सिमरन तिन रैन बिरथा ब्याय, मेघ बिना जो खेती जाए। गोबिंद भजन बिन बिरथे सब काम, जो कृपन के निरारत दाम। तन धन तेजन जे गट।

कीन। अवर उपदेश आप न करे, आवत जावत जन्म मरे, जिसके अंतर बसे निरंकार तिसकी सीख तरह संसार। जो तुम पाने तिन प्रभ जाता, नानक कुंजन चरण प्राता। करूं बेनती पार ब्रह्म सब जाने, अपना किया पहमाने आप है आप करने बेरा, किसे दूर जनावत किसे बुझावत नेरा। उपाव स्यानव सगल ते रहत, सबक जाने आत्म की रहत, जिस पावे तिस लय लड़ लाए, थान तनंतर रहा समाय।

बिन सजाए अहमेव नानक प्रभ शरणागति कर प्रसाद गुरुदेव अष्टपदी जय प्रसाद छति अमृत खाए तिस ठाकुर को रख मन माहे जय प्रसाद सुगंधत तन लाभ है तिसको सिमरत परम गत पाव है जय प्रसाद बसे सुख मंदर तिसे त्याय सदा मनंदर जय प्रसाद गिरे संग सुख वसना आठ पैर सिमरो तिस रसना जय प्रसाद रंगरस भोग नानक सदा त्याये त्यावन जोग जय प्रसाद पाठ पटंबर हडावे तिसे त्या कतवर लुभावे जय प्रसाद सुख से सोई जय मनार पर ताका जस गावी जय जय प्रसाद तो सबको माने मुक्ता को जस रसन बखाने जय प्रसाद तेरो रहता त्रमन सदा त्याय केवल पार ब्रह्म प्रभु जी जय बदर।

सास सास सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंद, आसन त्याग तरंग संजना की तूर, मन मंगा छोड़ बेनती करहो, सास गगन सागर तरहो, हर तन के परले हो पंडार, नानक गुर पूरे नमस्कार, खेम कुशल सहजानंद, सास भज परमानंद, नरक निवार उधारो जियो, गुण गोविंद अमृत रस पियो, चित चितवो नारायण एक एक रूप जाके रंग अनेक, गोपाल दामोदर दीन दयाल, दुख पंजन पूर्ण कृपाल, सिमर सिमर नाम बारंबार, नानक जी का हे आधार, उत्तम सलोक साध के वचन अमलीक लाल, एह रतन सुनत कुमावत होत उदार, आप तरे लोक निस्तार, सफल जीवन सफलता का संग, जाकै मन लागा हर रंग, जय जय शबद अनाहद वाजय, सुन सुन अनद करे प्रभु का, जय प्रकटे गोपाल महान के माथे, नानक उदरे तिन के साथे, शरण जो सुन सरणी आए, कर कृपा प्रभाव मिलाए, मिट गए बैर पय सबरे, नमृत नाम सा संगलैन, सो प्रसन्न पय गुरुदेव, पूर्ण होई सेवक की सेवा, आल जंजाल विकार ते रहते, राम नाम सुनसना कहते, कर प्रसाद दया प्रभु तारी, नानक खेप मारी, प्रभु की उस्तत करहो, संत मीत सावधान एका गर्चित, सुखमनी सहज गोविंद गुण नाम, जिस मन बसे सो होत निधान, सर्व इच्छा ताकि पूर्ण होए प्रधान, पुरुख प्रकट सब लोए, सब तो इस पाए स्थान, बहुर्न होवे आमन जान, हर तन काट चले जन सोए, नानक जिस है प्राप्त होए, खेम शांत हृद नवनिध, बुद्ध ज्ञान सर्वते सिद्ध, विद्या तप जोग प्रभु ध्यान, ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान, चार पदार्थ कमल प्रकाश, सबके मत सकल देवदास, सुंदर चतुर तत्का भीतर समदर्शी, एक दृष्टि ताए फल तजन के मुख पन्ने, गुरु नानक नाम वचन मन सुनने, एहो निदान जपै मन कोय, सब जुग में ताकीगत होए, गुण गोविंद नाम तुन बाणी, सिमरत शास्त्र वेद बखानी, सकल मतांत के उलर नाम, गोविंद भगत के मन विश्राम, कूट अपराध सा संग मिटे, संत कृपा ते जमते छुट्टे, जाकै मस्तक करम प्रपाए, सा संग नानक ते आए, जिस मन बसै सुनै लाए प्रीत, जनावे हर प्रभ चीत, जन्म मरणता का दुख निवारे, दुर्लभ देह तत्काल उधारे, निर्मल शोभा अमृता की वाणी, एक नाम माहि समानी, दुख रोग बिनसे पे परम, साध नाम निर्मलता के करम, सब ते उच्चता की शोभा बनी, नानक के गुण नाम सुखमनी, दुख रोग बिनसे पै परम, साध नाम निर्मलता के करम, सब ते उच्चता की शोभा बनी, नानक हे गुण नाम सुखमनी, सुखमनि सुख अमृत प्रभ नाम, भगजना कै मन विश्राम, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਾਪ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਵਾਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਛਪੈ ਛੰਦ ਤਵੈ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਚੱਕਰ ਚਿਹਨ ਅਰ ਵਰਣ ਜਾਤ ਅਰ ਪਾਤ ਨਹਿਨ ਜਿਹੇ, ਰੂਪ ਰੰਗ ਅਰ ਰੇਖ ਭੇਖ ਪਉ ਕਹਿ ਨਾ ਸਕਤ ਕਿਹੇ। ਅਚਲ ਮੂਰਤਨ ਭਉ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮ ਤੋਜ ਕਹਿਜੈ, ਕੋਟ ਇੰਦਰ ਇੰਦਰਾਣ ਸਾਹੇ ਸਾਹਾਣ ਗਣਜੈ। ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਮਹੀਪ ਸੁਰ ਨਰ ਅਸੁਰ ਨੇਤ ਨੇਤ ਬਨ ਤ੍ਰਿਣ ਕਹਿਤ, ਤਵੈ ਸਰਬਨਾਮ ਕਥੈ ਕਵਨ ਕਰਮ ਨਾਮ ਵਰਣਤ ਸੁਮਤ। ਭੁਜੰਗ ਪ੍ਰਿਆ ਤੁ ਛੰਦ ਨਮਸਤਵੰ ਅਕਾਲੇ ਨਮਸਤਵੰ ਕ੍ਰਿਪਾਲੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਰੂਪੇ ਨਮਸਤੰ ਅਨੂਪੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਭੇਖੇ ਨਮਸਤੰ ਅਲੇਖੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਕਾਏ ਨਮਸਤੰ ਅਜਾਏ, ਨਮਸਤੰ ਅਗੰਜੇ ਨਮਸਤੰ ਅਭੰਜੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਨਾਮੇ ਨਮਸਤੰ ਅਠਾਮੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਕਰਮੰਗ ਨਮਸਤੰ ਅਧਰਮੰਗ, ਨਮਸਤੰ ਅਨਾਮੰਗ ਨਮਸਤੰ ਅਧਾਮੰਗ, ਨਮਸਤੰ ਅਜੀਤੇ ਨਮਸਤੰ ਅਪੀਤੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਬਾਹੇ ਨਮਸਤੰ ਅਟਾਹੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਨੀਲੇ ਨਮਸਤੰ ਅਨਾਦੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਛੇਦੇ ਨਮਸਤੰ ਅਗਾਦੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਗੰਜੇ ਨਮਸਤੰ ਅਭੰਜੇ, ਨਮਸਤੰ ਉਦਾਰੇ ਨਮਸਤੰ ਅਪਾਰੇ, ਨਮਸਤੰ ਸੋ ਏਕੈ ਨਮਸਤੰ ਅਨੇਕੈ, ਨਮਸਤੰ ਅਭੂਤੇ ਨਮਸਤੰ ਅਜੂਪੇ, ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਕਰਮੇ ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਭਰਮੇ, ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਦੇਸੇ ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਭੇਸੇ, ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਨਾਮੇ ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਕਾਮੇ, ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਧਾਤੇ ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਘਾਤੇ, ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਧੂਤੇ ਨਮਸਤੰ ਅਭੂਤੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਲੋਕੇ ਨਮਸਤੰ ਅਸੋਕੇ, ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਤਾਪੇ ਨਮਸਤੰ ਆਥਾਪੇ, ਨਮਸਤੰ ਤ੍ਰਿਮਾਨੇ ਨਮਸਤੰ ਨਿਧਾਨੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਗਾਹੇ ਨਮਸਤੰ ਆਬਾਹੇ, ਨਮਸਤੰ ਤ੍ਰਿਵਰਗੇ ਨਮਸਤੰ ਅਸਰਗੇ, ਨਮਸਤੰ ਪ੍ਰਭੋਗੇ ਨਮਸਤੰ ਸੁਜੋਗੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਰੰਗੇ ਨਮਸਤੰ ਅਭੰਗੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਗਮੇ ਨਮਸਤਸਤ ਰਮੇ, ਨਮਸਤੰ ਜਲਾਸਰੇ ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਾਸਰੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਜਾਤੇ ਨਮਸਤੰ ਅਪਾਤੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਮਜਬੇ ਨਮਸਤਸਤ ਅਜਭੇ, ਆਦੇਸੰ ਆਦੇਸੇ ਨਮਸਤੰ ਅਪੇਸੇ, ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਧਾਮੇ ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਭਾਮੇ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਕਾਲੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਦਿਆਲੇ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਰੂਪੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਭੂਪੇ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਖਾਪੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਥਾਪੇ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਕਾਲੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਪਾਲੇ, ਨਮਸਤਸਤ ਦੇਵੈ ਨਮਸਤੰ ਅਭੇਵੈ, ਨਮਸਤੰ ਅਜਨਮੇ ਨਮਸਤੰ ਸੁਬਨਮੇ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਗੌਣੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਭਾਉਣੇ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਰੰਗੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਭੰਗੇ, ਨਮੋ ਕਾਲ ਕਾਲੇ ਨਮਸਤਸ ਦਿਆਲੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਵਰਣੇ ਨਮਸਤੰ ਅਮਰਣੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਜਰਾਰੰਗ ਨਮਸਤੰ ਕਰਤਾਰੰਗ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਧੰਦੇ ਨਮੋ ਸਤ ਬੰਧੇ, ਨਮਸਤੰ ਸਾਕੇ ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਵਾਕੇ, ਨਮਸਤੰ ਰਹੀਮੇ ਨਮਸਤੰ ਕਰੀਮੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਨੰਤੇ ਨਮਸਤੰ ਮਹੰਤੇ, ਨਮਸਤਸਤ ਰਾਗੇ ਨਮਸਤੰ ਸੁਹਾਗੇ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਸੋਖੰਗ ਨਮੋ ਸਰਬ ਪੋਖੰਗ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਕਰਤਾ ਨਮੋ ਸਰਬ ਹਰਤਾ, ਨਮੋ ਜੋਗ ਜੋਗੇ ਨਮੋ ਭੋਗ ਭੋਗੇ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਦਿਆਲੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਪਾਲੇ, ਚਾਚਰੀ ਛੰਦ ਤਵੈ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਅਰੂਪ ਹੈ ਅਨੂਪ ਹੈ ਅਜੂ ਹੈ ਅਭੂ ਹੈ ਅਲੇਖ ਹੈ ਅਭੇਖ ਹੈ ਅਨਾਮ ਹੈ ਅਕਾਮ ਹੈ ਅਧੇ ਹੈ ਅਭੇ ਹੈ ਅਜੀਤ ਹੈ ਅਭੀਤ ਹੈ ਤ੍ਰਿਮਾਨ ਹੈ ਨਿਧਾਨ ਹੈ ਤ੍ਰਿਵਰਗ ਹੈ ਅਸਰਗ ਹੈ ਅਨਿਲ ਹੈ ਅਨਾਦ ਹੈ ਅਜੇ ਹੈ ਅਜਾਦ ਹੈ ਅਜਨਮ ਹੈ ਅਵਰਣ ਹੈ ਅਭੂਤ ਹੈ ਅਭਰਣ ਹੈ ਅਗੰਜ ਹੈ ਅਭੰਜ ਹੈ ਅਚੂਜ ਹੈ ਅਚੰਜ ਹੈ ਅਮੀਕ ਹੈ ਰਫੀਕ ਹੈ ਅਤੰਧ ਹੈ ਅਬੰਧ ਹੈ ਨਿਰਪੂਜ ਹੈ ਅਸੂਜ ਹੈ ਅਕਾਲ ਹੈ ਅਜਾਲ ਹੈ ਅਲਾਹ ਹੈ ਅਜਾ ਹੈ ਅਨੰਤ ਹੈ ਮਹੰਤ ਹੈ ਅਲੀਕ ਹੈ ਨਿਰਸਰੀਕ ਹੈ ਨਿਰਲੰਬ ਹੈ ਅਸੰਭ ਹੈ ਅਗਮ ਹੈ ਅਜਮ ਹੈ ਅਭੂਤ ਹੈ ਅਛੂਤ ਹੈ ਅਲੋਕ ਹੈ ਅਸੋਕ ਹੈ ਅਕ੍ਰਮ ਹੈ ਭ੍ਰਮ ਹੈ ਅਜੀਤ ਹੈ ਅਭੀਤ ਹੈ ਅਬਾਹ ਹੈ ਅਗਾਹ ਹੈ ਅਮਾਨ ਹੈ ਨਿਧਾਨ ਹੈ ਅਨੇਕ ਹੈ ਫਿਰ ਏਕ ਹੈ ਭੁਜੰਗ ਪ੍ਰਿਆਤ ਛੰਦ ਨਮੋ ਸਰਮਾਨੇ ਸਮਸਤੇ ਨਿਧਾਨੇ ਨਮੋ ਦੇਵ ਦੇਵੇ ਅਪੇਖੀ ਅਭੇਵੇ ਨਮੋ ਕਾਲ ਕਾਲੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਪਾਲੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਗੌਣੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਭਾਉਣੇ ਅਨੰਗੀ ਅਨਾਥੇ ਨਿਰਸੰਗੀ ਪਰਮਾਥੇ ਨਮੋ ਭਾਨ ਭਾਨੀ ਨਮੋ ਮਾਨ ਮਾਨੇ ਨਮੋ ਚੰਦਰ ਚੰਦਰੇ ਨਮੋ ਭਾਨ ਭਾਨੇ ਨਮੋ ਗੀਤ ਗੀਤੇ ਨਮੋ ਤਾਨ ਤਾਨੇ ਨਮੋ ਨਿਰਤ ਨਿਰਤੇ ਨਮੋ ਨਾਦ ਨਾਦੇ ਨਮੋ ਭਾਨ ਭਾਨੇ ਨਮੋ ਬਾਦ ਬਾਦੇ ਅਨੰਗੀ ਅਨਾਮੇ ਸਮਸਤੀ ਸਰੂਪੇ ਪ੍ਰਭੰਗੀ ਪਰਮਾਥੇ ਸਮਸਤੀ ਵਿਭੂਤੇ ਕਲੰਕੰ ਬਿਨਾਨੇ ਕਲੰਕੀ ਸਰੂਪੇ ਨਮੋ ਰਾਜ ਰਾਜੇਸ਼ਵ ਪਰਮ ਰੂਪੇ ਨਮੋ ਜੋਗ ਜੋਗੇਸ਼ਵ ਪਰਮ ਸਿੱਧੇ ਨਮੋ ਰਾਜ ਰਾਜੇਸ਼ਵ ਪਰਮ ਵਿਰਧੇ ਨਮੋ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਪਾਣੀ ਨਮੋ ਅਸਤ੍ਰ ਮਾਣ ਨਮੋ ਪਰਮ ਗਿਆਤਾ ਨਮੋ ਲੋਕ ਮਾਤਾ ਅਪੇਖੀ ਅਭਰਮੀ ਅਭੋਗੀ ਅਭੁਗਤੇ ਨਮੋ ਜੋਗ ਜੋਗੇਸ਼ਵਰੰ ਪਰਮ ਜੁਗਤੇ ਨਮੋ ਨਿਤ ਨਾਰਾਇਣੇ ਕਰੂਰ ਕਰਮੇ ਨਮੋ ਪ੍ਰੇਤ ਅਪ੍ਰੇ ਦੇਵ ਸੁਧਰਮੇ ਨਮੋ ਰਵਘਰਤਾ ਨਮੋ ਰਾਗ ਰੂਪੇ ਨਮੋ ਸਾਹ ਸਾਹ ਨਮੋ ਭੂ ਭੂਪੇ ਨਮੋ ਦਾਨ ਦਾਨੀ ਨਮੋ ਮਾਂ
भगवान मन नमो रोग रोगी नमस्तंग स्नान नमो मंत्र मंत्रंग नमो जंत्र जंत्रंग नमो इष्टिष्टे नमो तंत्र तंत्रंग सदा सच्चिदानंद सर्वंग पूर्णासी अनूपे रूपे समस्त निवासी सदा सिद्ध दा बुद्ध दा वृद्ध करता अधो ऊर्ध अर्धंग अघंग ओघ हरता परम परम परमेश्वरं प्रोष पालंग सदा सर्वदा सिद्ध दाता दयालंग अछेदी अभेदिया नाम अकांग समस्तो पराजय समस्तस्तताम तेरा जोर चाचरी छंद जले हैं थले हैं अपीत हैं अपेय हैं प्रभु हैं अजू हैं अदेश हैं अपेश हैं भुजंग प्रयात छंद अगाधे अबाधे अनंदी स्वरूपे नमो सर्वमाने समस्ते निधाने नमस्तवंग निर्णाथे नमस्तवंग परमाथे नमस्तवंग गंजे नमस्तवंग पंजे नमस्तवंग काले नमस्तवंग पाले नमो सर्वदेशे नमो सर्वपेशे नमो राज राजी नमो साज साजे नमो साह साहे नमो माह माहे नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रूख रूखे नमो सुख सुखे नमो सर्व रोगे नमो सर्व भोगे नमो सर्व जीतंग नमो सर्व पीतंग नमो सर्व ज्ञानंग नमो परम तानंग नमो सर्व मंत्रंग नमो सर्व जंत्रंग नमो सर्व दृश्यंग नमो सर्व कृसंग नमो सर्व रंगे त्रिभंगी अनंगे नमो जीव जीवंग नमो बीज बीजे अखिजे अभिजे समस्तंग प्रसिजे कृपालंग स्वरूपे कुकर्म प्रणासी सदा सर्वदा हृदय सिदंग निवासी चरपट छंद त्वै प्रसाद अमृत कर्मे अमृत कर्मे खल जोगे अचल भोगे अचल राजे अटल साजे अखल तनगा लख कर्मंग सर्वंग दत्ता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग भाने सर्वंग माने सर्वंग प्राणंग सर्वंग त्राणंग सर्वंग भुक्ता सर्वंग युक्ता सर्वंग देवंग सर्वंग पेवंग सर्वंग काले सर्वंग पाले रुआल छंद त्वै प्रसाद आद रूप अनाद मूर्त जौन पुरख अपार सर्वमान त्रिमान देव पेव आद उदार सर्व पालक सर्व कालक सर्व पवन काल जत्र तत्र विराज अवधूत रूप रिसाल नाम ठमना जा जाक रूप रंग नारी के आद पुरख उदार मूर्त जौन आद अशेख देश और न भेस जा कर रूप रेख ना राग जतर ततर दिशा विसा हुए फैले उन राग नाम काम बही बिकताम हूं नह जाय सर्वमान सर्वतर्मा सदैव मानता है एक मूर्त अनेक दर्शन कीन रूप अनेक खेल खेला खेल खेल अनंत कौ फिर एक देव भेव ना जान ही जिह वेद और कतेब रूप रंग ना जात पासु जानी केह जेवतात मात ना जा चक्र जन्म मरण भीन चक्र बकर फिर चातर चक मान ही पुर तीन लोक चौदह के बिखे जग जा पी जेह दाप आद देव अनाद मूर्त था प्यो सब है जेह थाप परम रूप नीत मूर्त पूर्ण पुरख अपार सर्व विश्व रचेव सो यंग भाव गढ़ पंजन हार कालहीन कला संजुगत अकाल पुरख देश धर्म धाम सु भरम रहत अभूत अलख अपेश अंग राग नरंग जाके जात पात ना नाम गर्भ गंजन दुष्ट पंजन मुग्धाय काम आप रूप अमीक अन उस्तत एक पुरख अवतूत गर्भ गंजन सर्वपंजन आद रूप असूत अंगहीन अपंग अनात्म एक पुरख अपार सर्वलायक सर्वकायक सर्वको प्रतपार सर्वगंता सर्वहंता सर्व तीन पेक सर्वशास्त्र नौजान हिंदे रूप रंग अररेख परम वेद पुराण जाके नित पाखत नित कोट सिमृत पुराण शास्त्र न आवई बहुचित मधुपार छंद त्वै प्रसाद गुणगन उदार महमाया पारासन पंगुपमान अंग अनुपव प्रकाश निस्दिन नास जान बाहु साहन साहो राजान राजपानान पान देवान देव उपमा महान इंद्रान इंद्र बालान बाल रंकान रंक कालान काल अनुपूतंग आपा अपंगत मित अपार गुणगन उदार मुनगन प्रणाम निर्पैन काम अतदुत प्रचंड मित गत्या खंडालस्य कर्मा दृश्य धर्म सर्वा प्रणाढ्य अंडुड बाढ्य चाचरी छंद त्वै प्रसाद गोविंद मुकंदे उदारे अपारे हरियंग करियंग निर्णाम कामे भुजंग प्रयात छंद चतुर चक्र करता चतुर चक्र हरता चतुर चक्र दाने चतुर चक्र जाने चतुर चक्र वर्ती चतुर चक्र भरती चतुर चक्र पाले चतुर चक्र काले चतुर चक्र पासे चतुर चक्र वासे चतुर चक्र माने चतुर चक्र दाने चाचरी छंद ना सत्रे ना मित्रे ना परमंग ना पितरे ना कर्मंग ना काया जन्मंग जाय ना चित्रे ना मित्रे परे हैं पुत्रे प्रथी सै अधिसै आदर सै आकर सै भगवती छंद त्वै प्रसाद कथते के आछिज देसै के आभिज भेसै के आ गंज कर्मै के आ भंज परमै के आ भिज लोके के आदित सोके के उतूत वर्णै के विभूत करणै के राजन प्रभ है के धर्मंग तुजा है
के अशोक वर्ण के सर्वा पर्ण के जगतुं कृति है के छत्रंग क्षत्रिय के ब्रह्मंग स्वरूप के अनुपनुप के आदि देव के आप फेम के चित्रंग भिन्न के दिन के रोजी रजा के रही मैं रिहा के पाक बेऐब हैं के गैबल गैब हैं के अपल गुनाय के शान साह के कारण कृण्य के रोजी दहन दें के राज गृह में के कर्म करी में के सर्वंग कलि के सर्वंग दली हैं के सर्वत्र मान्य के सर्वत्र दान्य है के सर्वत्र गौण है के सर्वत्र पौण है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र राज है के सर्वत्र साज है के सर्वत्र दीन है के सर्वत्र लीन है के सर्वत्र जाहो के सर्वत्र पाह के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र काल है के सर्वत्र पाल है के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काजे के सर्वत्र राजे के सर्वत्र सुख है के सर्वत्र भूख है के सर्वत्र त्राण है के सर्वत्र प्राण है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र मान्य है सदैव प्रधान्य है के सर्वत्र जाप है के सर्वत्र थाप है के सर्वत्र पान है के सर्वत्र मान्य के सर्वत्र इंद्र है के सर्वत्र चंद्र है के सर्वं कलिमे के परमं पहिमे के आकल अलाम के साहब कलाम के सुलम वजू है तमाम रजू है मिसु सलाम सलीकत मुदाम गनी मुशिकस्त गरीब परस्त बुलंद मकान जमील जमान तमीजुल तमाम रजूल निधान हरीफुल अजीम रजायक यकीन है अनेकुल तरंग हैं अभेद हैं अपंग हैं अजीजल निवाज गनी मुख राज निरक्त स्वरूप हैं त्रिमुक्त विभूत हैं पर भुगत प्रभा हैं सुजुक्त सुधा हैं सदैव स्वरूप हैं अभेदी अनूप हैं समस्तोपराज हैं सदा सर्वसाज हैं समस्त सलाम है सदैव काम इंद्र बास रूप हैं अगाध हैं अनूप हैं ओंग आद रूप हैं अनाद स्वरूप हैं नंगी नामे त्रिपंगी त्रिकामे त्रिपग्नि त्रिबाध्य गंजे अगाध सुभंग सर्वभाग्य सुसर्वा अनुराग है त्रिपुक्त स्वरूप हैं अछिज हैं अछूत हैं के नरक प्रणाश हैं पृथ्वल प्रवास हैं निरुक्त प्रवाह हैं सदैव सदा हैं विपुक्त स्वरूप हैं प्रजुक्त अनूप हैं निरुक्त सदा हैं विपुक्त प्रवाह हैं अनुक्त स्वरूप हैं प्रजुक्त अनूप हैं चाचरी छंद भंग हैं नंग हैं भेख हैं लेख हैं आपर्म हैं अकर्म हैं अनाद हैं जुगाद हैं अजय हैं अभय हैं अभूत हैं अतूत हैं अनास हैं उदास हैं तंध हैं बंध हैं भगत हैं विरक्त हैं अनास हैं प्रकाश हैं निश्चिंत हैं सुनित हैं लिख हैं दिख हैं लेख हैं भेख हैं अडा है अका है अटा है अगा है संभय गंभ हैं नीले नाद हैं नित्य हैं सुनित हैं जात हैं आजाद हैं चरपट छंद त्व प्रसाद सर्वंगंता सर्वंगंता सर्वंख्याता सर्वंज्ञाता सर्वंकर्ता सर्वंकर्ता सर्वंग प्राणंग सर्वंग त्राणंग सर्वंग कर्मंग सर्वंग धर्मंग सर्वंग युक्ता सर्वंगता रसावल छंद त्व प्रसाद नमो नरक नासे सदैव प्रकाशय नंगं स्वरूपे अपंगं विपुते परमात्म परमाथे सदा सर्वसाथे अगाध रूपे निर्बाध रूपे नंगी नामे त्रिपंगी त्रिकामे त्रिपंगी स्वरूपे सर्वंगी रूपे न पुत्र न पुत्र न सत्र न मित्र न ताते न मात न जाते न पात न साक्ष श्री हैं अमितो अमीक हैं सदैव प्रवाह हैं अजय हैं अजा हैं भगवती छंद त्व प्रसाद के जाहर जरूर है के हार जहर हजूर है मे सुसलाम समस्त कलाम के साहब जमा के हसमुच राग कामल क्रिमे के राज करीम के रोजी दहन दे के राज करह दे करीमल कमाल के हसल जमाल गनीमल के राज गरीब निवाज है हरी फुल शिकन है रासुल फिकन है कलंक प्रणाश है समस्त निवास है अगंजल गनीम है रजायक रहीम है समस्त जुबा है के साहिब किरा है के नरंग प्रणाश है बहस्त निवास है के सर्वुल गवन है मेसुल रवन है तमाम तमीज है तमस्तुल अजीज है परम परमीस है समस्तुल अदीस है देसुलेख है मेसुल अपेख है जमील जमा है मेकली माह है करीमल कमाल है के जुरत जमाल है के अचलंग अनंग प्रकाश है के अमितो सुबास है के अजब स्वरूप है के अमितो विभूत है के अमितो पसा है के आत्म प्रभा के अचल अनंग है के अमितो अभंग है मधुपार छंद त्वै प्रसाद मुन मन प्रणाम गुन गुन मुदाम अरबर गंज हनर प्रपंज अनगन प्रणाम मन मल सलाम हरनर अखंड वरनर अमंड अनुपम नास मुन मन प्रकाश गुन गुन प्रणाम जल थल मुदाम अनच्छेद अंग आसन अभंग उपमा पार गत मित उदार जल थल अमंड दिस विस अभंड जल थल महंत दिस विस ब्यंत अनुभव नास तृत धरतर त्रित धर तुरास अजान बाहु एकिसदा हो ओंकार आदि कथनी अनाद खलखंड ख्याल गुरबर अकाल कर कर प्रणाम चित चरण नाम अनच जगात जजना बात अनरंज अन झंझ गात अनरंज बात अन ठुट भंडार ठटिया पार आ डीठ धर्म अत ढीठ कर्म आण ब्रण अनंत दाता महंथर बोल मना छंद त्वै प्रसाद
करुणालय है, अर्कालय है, कलखंडन है, महमंडन है, जगतेश्वर है, परमेश्वर है, कल कारण है, सर्व उबारण है, त्रित के तरण है, जग के करण है, मन मान्य है, जग जान्य है, सर्वंपर है, सर्वंकर है, सर्वपाश्य है, सर्वनाश्य है, करुणाकर है, विश्वंबर है, सर्वेश्वर है, जगतेश्वर है, ब्रह्मंडस है, खलखंडस है, पारते पर हैं, करुणा करें, जपा जापें, अथप्पा थापें, अकृता कृतें, अमृतामृत हैं, अमृतामृत हैं, करुणा करतें, अकृता करते हैं, तरणी तृतें, तेश्वर हैं, परमेश्वर हैं, आकृता करते हैं, अमृतामृत हैं, अजबा करते हैं, अमृतामृत हैं, नरनायक हैं, कलकायक हैं, स्वंबर हैं, करुणालय हैं, नृपनायक हैं, सर्वपायक हैं, पवभंजन हैं, अर्गंजन हैं, रिपुतापन हैं, जप जापन हैं, आकुलंकृत हैं, सर्वाकृत हैं, कर्ताकर हैं, हर्ताहर हैं, परमात्मा सर्वात्मय आत्मवस्य जसके जसे भुजंग प्रयात छंद। नमो सूर सूर्जे, नमो चंद्र चंद्रे, नमो राज राजे, नमो इंद्र इंद्रे, नमो अंधकारे, नमो तेज तेजे, नमो वृंद वृंदे, नमो बीज बीजे, नमो रासंग ताम संग शांत रूपे, नमो परम तत्तं अतत्तं स्वरूपे, नमो जोग जोगे, नमो ज्ञान ज्ञाने, नमो मंत्र मंत्रे, नमो ध्यान ध्याने, नमो जुद जुधे, नमो ज्ञान ज्ञाने, नमो भोज भोजे, नमो पान पाने, नमो कलहकर्ता, नमो शांत रूपे, नमो इंद्र इंद्रे अनादं विभूते कलंकार रूपे अलंकार अलंके, नमो आसासे, नमो बाक भंके अभंगी स्वरूपे, नंगी नामे त्रिभंगी त्रिकाले, नंगी आकामे एक अक्षरी छंद। अजय अलय अपय अभय अपू अजू अनासकास अगंज भंज अलख अपख अकाल दयाल लेख पेख नाम काम आगाह अटाह नाथ परमाथ अजोनी अमोनी न रागे न रंगे न रूपे न रेखे आकर्मंग अपरमंग अगंजे अलेखे भुजंग प्रयात छंद। नमस्तुल प्रणामे समस्तुल प्रणासे अगंधुल अनामे समस्तुल निवासे इंद्रकामंग विपुते समस्तुल स्वरूपे कुकर्मंग प्रणासी सुतर्मंग विपुते सदा सच्चिदानंद सत्रंग प्रणासी करीम कुनिंदा समस्तुल निवासी अजायब विपुते गजायब गनीमे हरियं करियं करीमुल रहीमे चत्र चक्रवर्ती चत्र चक्र पुगते सुयं पाव सुभं सर्वदा सर्वजुगते दुकालं परणासी दयालं स्वरूपे सदा अंग संगे

जीव जिते जल में थल में बल ही बल में सब थापत पेंगे पुन प्रतापन बाढ़ जैत तुन पापन कै भव पुंज कपेंगे साध समूह प्रसन्न फिरे जग सत्र सब अवलोक चपेंगे साध समूह प्रसन्न फिरे जग सत्र सब अवलोक चपेंगे मानव इंद्र गजेंद्र निराधव जौंतर लोको राज करेंगे कोट स्नान गजादिक दान अनेक स्वंबर साज भरेंगे ब्रह्म महेश्वर विष्णु सचिपत अंत फसे जम फास परेंगे जे न श्रीपत के प्रस हैं पग ते नर फिर न देह तरेंगे कहाँ पयो जो दो लोचन मूंद कै बैठ रहे बक ध्यान लगायो न हाथ तुरो लिये सा समुद्र लोक पर लोग वायो बास कियो बिखयान सो बैठ कै ऐसे ही ऐसे सो बैस बितायो साच कहूं सुन लिहो सब है जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो काहू लै पाहन पूज तरियो सिर काहू लै लिंगरे लटकायो काहू लिखियो हर अवाची दिशा मह काहू पछां को शीस नवायो को बुतान को पूजत है पास को मृतान को पूजन तारो पूर क्रिया उर्जयो सब ही जाग श्री भगवान को भेद न पायो को बुतान को पूजत है पास को मृतान को पूजन तायो पूर क्रिया उर्जो सब ही जाग श्री भगवान को भेद न पायो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाह दसवीं कबीर बाच बेनती चाओ पई हमरी करो हादे रचा पूर्ण होए चित की इच्छा तब चरण नमन रहे हमारा अपना जान करो प्रत पारा हमरे दुस्सबै तुम काबो आपा दे मुहे बचाओ सुखी बसै मोरो परवारा सेवक सिख है सबै करतारा मोर अच्छा नज कर दै करिय सबै रण को आसंगरिय पूर्ण होए हमारी आसा तोर भजन की रह प्यासा तुम्हें छाड़ कोई अवरना त्याऊ जो बुरचाऊ सु तुम ते पाऊ सेवक सिख हमारे तारी है चुन चुन सत्र हमारे मारी है आप हाद मध अभरिय मरण काल का त्रास नोरिय हूजो सदा हमारे पच्छा श्री अस्तु जो करे हो रक्षा राख लो मोहे राखिन हारे साहिब संत सहाय प्यारे दीन बन दुष्टन के हंता तुम्हो बुरी चतुर्दशकंता काल पाए ब्रह्मा बपतरा काल पाए शिवजू अवतरा काल पाए कर वसन प्रकाशा सकल काल का किया तमासा जवन काल जोगी सब कियो वेद राज ब्रह्मा जू थियो जवन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताहि हमारा जवन काल सब जगत बनायो देव दैत जक्षन पुजायो आदंत एक अवतारा सोय गुरु समझो हमारा नमस्कार तिस ही को हमारी सकल प्रजा जिने आप सवारी सिवकन को सब गुण सुख दियो सतरन को पलम बद कियो कट कट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछान चीटी ते कुंचर अस्थूला सब पर कृपा दुष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछाने कटकट के बड़बड़ की जाने जब उदकर्क करा करतारा प्रजा तर तब धे अपारा जब आकर्क करत हूँ कब हूँ तुम मैं मिलत देह तर सब हूँ जेते बदन श्रेष्ठ सब तार आप अपनी बूझ उचारे तुम सब ही तेरे तंदरालम जानत वेद भेद अर आलम निरंकार निर्विकार निर्लंब याद नील अनादे संब ताका मूढ़ उचारत भेदा जाको भेवना पावत बेदा ताको कर पाहन अनुमानत महामूढ़ कश भेद न जानत महादेव कौ कह सदाशिव निरंकार का चीनत नह पिव आप अपनी बुध है जेती वर्णत भिन्न भिन्न तुह तेते तुमरा लख न जाय पसारा के बिस्जा प्रथम संसारा एक रूप अनूप स्वरूपा रंक भयो राव कहि भूपा अंडज जे रज से तुजकीनी उतपुज खान बहर रच दीनी कहूँ फूल राजा वह बैठा कहूँ सिमड़ व्यो शंकर एक ऐठा सिगरी शिट दिखाए अचंग पवा जुगा स्वरूप संयंग पव अब्रच्छा मेरी तुम करो सिख अबार सिख संघरो दुष्ट ते उठवत तो पाता सकल मले चकरो रण काता जे अस्तु तब सरणी परे तिनके दुष्ट दुखत हवै मरे पुरख जौन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे।

निकट नात नर के रहै। हो जो याकी एक बार चौपाई को कह, चौपाई संबत सत्र सहस पुण जय अर्ध सहस पुण तीन कह, जय भाद्रव सुधी अष्टमी रव बारा तीर सतत द्रव ग्रंथ सुधारा सवैया। पाए गह जब ते तुम दे तब ते कुआ करे नहीं आन्यो, राम रहीम पुराण कुरान अनेक कह मत एक न मान्यो। सिमृत शास्त्र वेद सब बहु भेद कहें हम एक न जान्यो।

परम सत्कार योग सात संगत जियो। अज दे जो हुक्मनामे दी बख्शिश होई है सोरठ राग दे विच धन गुरु नानक देव महाराज जी दी पावन ते पवित्र रसना तो यह शब्द उच्चारण होया है। पातशाह फरमान करते हैं सोरठ महला पहला ते तुकी। सोरठ राग है महला पहला धन गुरु नानक देव पातशाह महाराज और तीन तीन तुकां दे विच शब्द उच्चारण किया गया है।